चंदन पलकिया झूला जरा दे मैया, चंदन पलकिया तुम झूलो

ಒಲ್ಲೋ ವಾರಿಸು

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा, तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।
1: आओ बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
2: आओ बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: आओ बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
2: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
1: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
2: सरपंच

0: बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक

0: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
1: पंचायत की।
0: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
2: ग्राम सभा।
0: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
1: ग्राम सभा की।
0: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
3: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: चंदन जी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
5: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान

0: पहले ये समझना पड़ेगा, जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हम तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
1: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
0: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पर तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या हैं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं, इसमें हम जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पर कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है, ये सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहाँ पहुंचना है ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को, जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजना ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है, और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पर किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है, और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय

0: समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेकर बात की सकती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
3: पंचायत की।
2: गांव में कितने कितने और का काम हुजे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
2: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
3: ग्राम सभा की।
2: मैं हूँ जा गाँव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सर

0: आबादी हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है, और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदभूमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू और ये फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
1: मैम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस
0: जी
1: मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस
0: जी जी
1: गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे
0: जी
1: किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना
0: जी जी
1: चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
0: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया
0: जी
1: आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गी की बात करें तो कद्दू वर्गी की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो
0: हाँ
1: कौन
0: जी
1: कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या
0: जी
1: उनको उपाय करना चाहिए मैम?
0: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उकटा या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं, जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से, और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं, और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और अगेती बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वर्गीय फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारक हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.25 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था

0: मैं बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हूँ, तो मेटालेक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालेक्सिल और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।
3: तो मामा को निभाए

0: जहाँ तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दूवर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं क्षेत्र
1: बिल्कुल भाई
0: में।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में

0: गिरावट देखने को मिल रही है।
1: जैसा कि हम लोगों ने हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती जब टमाटर शुरुआत में आता है, मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है। जी
0: मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना चाहिए इन
1: जी
0: बातों
1: शुरुआत से,
0: को।
1: किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है, जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोग जनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोग जनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोग जनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोग जनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
0: मैम, तो
1: उतना।
0: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट
1: जी
0: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है,
1: जी
0: तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
1: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
0: जी
1: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
0: बिल्कुल
1: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढांचा लगवा दिया जाए खेत में तो उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
0: मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर
1: जी
0: देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ
1: जी
0: पर खरबूज और तरबूज की
1: जी
0: पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन
1: जी
0: आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब
1: आप ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है।
0: जी
1: दूसरी चीज ये है वहां रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो, जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि खरबूज तरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
0: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं,
1: जी
0: क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये
1: जी
0: हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल
1: जी
0: हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि
1: जी
0: जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर
1: जी
0: पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर

0: देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम
1: जी
0: बाल विवाह की इसमें बात करें तो जलवायु
1: जी
0: परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा
1: जी
0: जाए देखा जाए, क्योंकि एक
1: जी
0: दूसरे
1: जी
0: से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है
1: जी
0: कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर
1: जी
0: महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को
1: जी
0: मिलता है, उसके
1: जी
0: बारे में मैम आपका क्या ख्याल है?
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं। क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है। तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि
0: जी मैम,
1: हम लोग जो है, हमारा खान पान ऐसा है कि
0: जी मैम,
1: हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
0: जी
1: दूसरे,
0: मैम,
1: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ शिक्षा की कमी है। क्योंकि जहां शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
0: बिल्कुल मैम,
1: और
0: बिल्कुल,
1: जहां शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
0: जी मैम,
1: और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
0: जी मैम,
1: लोग जो हैं वो, अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए तो
0: जी मैम,
1: पर्यावरण भी सुधर जाएगा,
0: जी मैम,
1: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक
0: और
1: जाएंगे।
0: कहीं
1: तो
0: ना कहीं
1: इसका जो
0: मैम
1: है,
0: हमने भी
1: इसका
0: मैम,
1: एक और
0: जी
1: जी
0: मैम,
1: विकल्प यही है कि शिक्षा,
0: जी बिल्कुल,
1: आप
0: आपने सही
1: शिक्षित
0: बात कही
1: हो
0: है
1: और
0: कि
1: दूसरों
0: शिक्षा
1: को
0: एक
1: शिक्षित
0: ऐसा
1: करें।
0: विकल्प है
1: जी
0: जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए।
1: जी क्योंकि
0: समस्या यहाँ पर
1: जब आप
0: मैम ये
1: शिक्षित
0: आती है,
1: होंगे,
0: जी
1: जी, अब आप शिक्षित होंगे तभी
0: जी
1: आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
0: बिल्कुल
1: पाएंगे
0: मैम,
1: कि
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
0: बिल्कुल,
1: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें,
0: जी मैम,
1: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्सी से लगाएं, और जंगलों को ना काटें,
0: जी मैम,
1: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो
0: जी मैम,
1: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
0: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको वाली बात ही जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
1: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
0: जी मैम,
1: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 2007 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
0: जी मैम,
1: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
0: जी मैम,
1: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा, तो वो कमाने के लिए जाता है। अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी, जो लड़की या शादी करना है
0: जी
1: वो
0: मैम,
1: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम काम वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो
0: जी मैम, जी मैम,
1: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
0: जी मैम,
1: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए, जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
0: जी मैम,
1: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से, जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था,
0: बिल्कुल मैम, जी मैम,
1: बिल्कुल साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो, मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा कोई लेना नहीं चाह रहा था,
0: जी मैम,
1: लेकिन हवा जो है वो बहुत, जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो

0: जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम, इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान
0: इसको
1: मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
0: रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कारपूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण करें, और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते
0: जी धन्यवाद, उन्होंने
1: हैं। थैंक यू मैम।
0: मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी, जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: थैंक यू। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक गायक कलाकार से भी बात करते हैं और कछु विधा के अनुसार अपन गीतन को भी सुनते हैं। तो दोस्तों, ई में अपन आज पहला तो मिले भैया बाबूलाल कुशवाहा जी से और उनसे जाने के उनने गाबो बजाबो कैसे सीखो है, काका विधान जी गाउत हैं। और दोस्तों, यही के संगे संगे देखो अपने जो भारतीय परंपरा में नवदुर्गन को त्यौहार मानो जाते, वो त्यौहार भी अपनो आ रहो है, बिल्कुल नियरे आगो है। तो दोस्तों, अपन को त्यौहार में भी गाउत बजाउत हैं, तो ऊ त्यौहार में जो देवी गीत अपन गाउत हैं वह देवी विधा को आउत है, तो ऊ देवी विधा के गीत भी अपन आज ही कार्यक्रम में सुने और भैया बाबूलाल से भी उनकी जुबानी को सुने। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। लेकिन दोस्तों, बाबूलाल जी से मिलवे से पहले अपन सुनत हैं एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद आप और लो और हम सो लें। तो दोस्तों, आप सुनत हैं सबसे पहला तो एक गीत को और गीत को आनंद लेते हैं।

انداز

0: मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो दोस्तों कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है और गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया बाबूलाल कुशवाहा जी। तो साथियों बाबूलाल कुशवाहा जी के गीत के बाद अब बाबूलाल जी से बात भी करते हैं कि भाई कैसे गावो बजावो इनने सीखो है और कैसे कैसे इनने काका गाओ है। तो दोस्तों बाबूलाल कुशवाहा जी से आओ अपन मिलते हैं ये छोटे से संदेश के बाद। अच्छा भैया पहला तो आप अपना नाम बताओ।
1: बाबूलाल कुशवाहा।
0: बाबूलाल कुशवाहा कहाँ से हैं अपन?
1: बासवान
0: चेताव से बाबूलाल जी। अच्छा बाबूलाल जी आप जा बताओ कि आपने जो गावो कहाँ से सीखो? तो
1: हमने हमारे बूढ़े पुराने हैं थे
0: पहले
1: के तो होता थे पहले इसमें
0: पहले इसे भजन जी होता थे आपके थे। अच्छा तो आपने उन्हें से सीख लो जो अशोक
1: पहले बैठा था डांटा दूर दूर।
0: हाँ दूर दूर
1: के गुस्सा ना हो पाए।
0: हाँ
1: और फिर उन्होंने कहा तो मैं सीख नहीं हमने। हाँ तो उन्होंने फिर बजवाओ गवाओ।
0: अच्छा तो आपको जो पता है कि आप जब कितने साल की हुई हो जब आपने सीखो है?
1: जब होंगे हम 15-16 साल की।
0: 15-16 साल की। तो आपको अच्छी ले हती मतलब गावे की
1: ले हती।
0: तो जैसे आपने 15-16 साल के हते हो और आप जैसे जो होते भजन वजन तो आप उनके करके उनके बैठन लगाते तो जो भजन का डेली होते क्या कम कम होते ऐसे
1: पहले तो जैसे ब्याह माई करेंगे आदमी अन्य बैठ गए रोजी होते पहले तो।
0: अच्छा
1: अगर और रिश्तेदार आ गए तो कही आज वो आज होने होने है।
0: अच्छा
1: सुबह अच्छी ले लगी।
0: हाँ फिर तो मैं ले बढ़त गई। फिर तुमने सबसे पहला का गाओ तो कछु ऐसी आप याद हो गए बाद की जब आपने सबसे पहला शुरुआत करी थी गावे की तो का चीज गाई?
1: हमने गाओ कछु नहीं।
0: हाँ
1: वो तो जैसे आपने गाओ।
0: हाँ सो हमने उठो संग ले वाला
1: आपने कह के हम तुमको बोलो।
0: हाँ
1: ऐसे ही ऐसे सीख गए।
0: अच्छा मतलब गावे वाले ने उठा दो फिर आप तुम साइड में बोलो।
1: हाँ पहले छेड़ बस ही को एक दूसरे से।
0: हाँ
1: फिर उन्हें सकाओ पे जा गाने तो नहीं आओ।
0: हाँ
1: सुनने के सुनाओ।
0: हाँ
1: तो फिर ऐसे ऐसे गाओ
0: तो गाओ सीख गए।
1: सीख गया सब चाहे थे पार्टियों में चले जा।
0: अच्छा अच्छी बात है। देखो तो आपको कितनी जब लगन से हो सब
1: हो लगन से
0: है के जब जिगर जी आदमी
1: हमें देख लगन है कि अब ब्याह है पे हम एक साल घर ही नहीं रहे।
0: अच्छा मतलब ब्याह आपको होगा तो?
1: हाँ घर नहीं आए एक साल। हम
0: एक साल आप घर नहीं आए फिर कहाँ गए थे आप?
1: अरे जो सिखाओगे उनके संग रहे आप तो ले जाए।
0: अच्छा आपको घर से कोई मतलब नहीं? हाँ। ले बताओ लेकिन अब आजकल के लड़का नहीं है ऐसे।
1: हाँ।
0: बेकच्चा हमें कोई सिखाया चाहना हमें कछु नहीं सीख रहे हमें तो घर
1: वो नहीं कहते रोटी खाई हमने।
0: अच्छा
1: वो तो ही रहे।
0: अच्छा को गाओ तो आपके तो जो ऐसे हते हमारे संग सीखते
1: चाचा ये हते परिवार के।
0: हाँ
1: तेरा लाल कुशवाहा गुजरा गए अब।
0: अच्छा
1: गुरु की हती
0: तो भी गाऊ थे सारंगी बजाओ
1: सारंगी
0: तो।

0: बजाओ सारंगी बजाओ तो तुम तो फिर उन्हीं के संग लग गए बस घर से कोई मतलब नहीं। अच्छा शादी क्या साल की है जब आपकी हो गई थी?
1: शादी हुई थी 18 साल में।
0: तो देखो आप हो जब लगन लगी लगन में आपने ना तो शादी देखी ना घर देखो ना कछु आप हो तो अपनो मंजिल दिखा रही थी कि हमें जो काम करने वो करने
1: सीखने सीखने का बजाओ
0: है। तो देखो एक लगन हो जी
1: अब यही तो अपनो साजबाज बूढ़े पानों का रखे हैं अपने।
0: अच्छा तो इस साजबाज में काका हो काका है बजावे वाह
1: सारंगी है खंजड़ी है जे झाने है। अच्छा
0: झीका है जे चीजें बजाते हैं आपकी। तो आप देखो भाई जो पुराने चलन के ये बाजे हैं जे अबे भी आप संभाल के रखे हैं अच्छी तरीका से
1: अगर फूट जाए तो हम उन्हें मर भी नहीं
0: पे मरवा भी जरूरत नहीं है और को मर पाते ना क्या नहीं जैसे खुद ही मर नहीं आती तो
1: नहीं हम खुद ही सीखा उन्हें सब सिखा हमें।
0: अच्छा
1: गुरु जी ने गावो बजावो और बनावो सब
0: कि अगर जब फूट जाए तो यही से मर लो मर दो। अच्छा काय से मरता अगर फूट जाए तो
1: जैसे जे बकरा की खाल है बकत जा की वो जाता जाना पड़ जाए गोवा मिल जाए।
0: अच्छा
1: गोवा की वह बढ़िया बोला
0: हाँ।
1: वो इतने की दाल बांट के
0: अच्छा
1: वो उसे घेरे से लगा दो
0: हाँ।
1: कड़ाई बना के जो जो जाएगी रस्सी की
0: हाँ।
1: वो दो तीन आदमी टीरे को चढ़वा दो डांट के।
0: अच्छा
1: दो दिन चढ़िया दी
0: तो एक फेविकॉल भी नहीं चाहे
1: हाँ हाँ फेविकॉल तो फेरे वो इधर आगे सामने।
0: अच्छा जाते कि ज्यादा काम करत चलो भैया। तो देखो आपने कितनी अच्छी बात अपने साथी में बताई। तो जब आपने कहो के सीखो जो सब काम तो जब से आप तो उन्हीं के संगे लगे रहे
1: हो लगा ही बिल्कुल
0: है
1: जरा काम का घर करो रात हाँ। होने के संगे कर गए।
0: अच्छा घर से कोई मतलब हाँ। नहीं रहो। चलो भैया जी तो देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई। बस जी आदमी खोजी की लगन लग जाए वो आदमी वो काम करके रुका
1: रुकता ही है नन्ना गए लो अभी।
0: अच्छा किए लो अभी गए
1: घर अंजन
0: बहुत हो
1: हाँ हाँ भज्जी बोले के काय तो आ तो जाना नहीं भजन में
0: हां आज जब घर आ गई
1: कहते कहते कहते तो नहीं जाने
0: हां
1: हमने जाने तो है
0: हां
1: ए बोले माने जाने
0: हां
1: और अपना लगाओ सावन
0: हो
1: और नन्ना लो आई के नहीं आप हमारे संग भाग गए
0: ले साहब
1: तीन दिन में लौटी थी।
0: ओहो तो जे तो जब की बात है जब आप खोज लगन लगी थी लेकिन अब के लड़का भाई आजकल के नहीं बेकत के हमें तो नन्ना को इंतजार है कब आ रहे
1: हो।
0: चलो भैया बाबूलाल जी आपने इतनी अच्छी बातचीत करी अपने साथियों से ही खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: हाँ देखो साथियों जी तो आते भैया बाबूलाल जी और बाबूलाल जी ने अपनी पूरी कहानी बता दी है कि हमने कैसे गावो बजावो सीखो है कितनी मुश्किल से सीख पाओ और काका गाउ थे। और दोस्तों एक के संगे अगर आप और भी गाउ थे बजाउ थे और अपनी बात को हम तक रखवा चाह रहे रेडियो से बतावो चाह रहे तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते। दोस्तों हमारा संपर्क नंबर है इस प्रकार से 075-25-84-81-11। साथियों जो नंबर लगा के आप हमसे सीधी बात कर सकते कि माता दिन भैया हम जो कार्यक्रम गाउत हैं जो देते हैं और जा विधाकों भी गाउत हैं। तो दोस्तों एक विधाकों अपन उजागर करवे के लाने और साथियों तक पहुँचावे के लाने और आदमी ये सुन के सीख सकें ई के लाने आप हमसे जरूर संपर्क करें कि आप कैसे नजा आपने सीखी है और काका आप गाउत हैं। तो दोस्तों हमने आपको नंबर बताई दो और ई नंबर पे आप फोन लगा के हमसे सीधी बात कर सकत। और दोस्तों अब एक क्रम में अपन देखो कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ भाई कार्यक्रम में सुना थे कछु गीतन को और गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।

देखो साथियों, जो कितना बढ़िया देवी गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद रहो है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया भगवान दास पिपरिया वाले। तो साथियों भगवान दास जी के ही देवी गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते तो हैं। कार्यक्रम में और सुनते हैं एक और बढ़िया से गीत को और लेते हैं गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में। तो आओ दोस्तों सुनते हैं ये प्यारे से गीत।

बिल्कुल साथियों, तुम बिन काज बनेना देव दर्शन माँ विराज मोरे अंगना। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद लो है। और दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं अपन एक और बढ़िया से देवी गीत को और वो गीत को आनंद लेते हैं। तो साथियों आप ऐसे सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को अपने दोस्त माता जी के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, सब पे कृपा राखियो हो माँ। देखो दोस्तों, कितना प्यारो जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ई गीत को आनंद लो है। और दोस्तों, ये गीत को गा रहे थे भैया हरी राम जी। तो साथियों, अब हरी राम जी के ही गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गए है। तो अपने दोस्त को दें ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ए कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

कब से जब से इस हसीना ने जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

बारी हमारे गांव की। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम बारी हमारे गांव की। दोस्तों बारी हमारे गांव की कार्यक्रम में अपन एक गांव की ओर चलते हैं और वो गांव की स्थिति को अपन जानते हैं कि ई गांव में का व्यवस्था बिजली की है, का व्यवस्था पानी की है, का व्यवस्था साफ सफाई की है और का व्यवस्था शिक्षा की है। सो दोस्तों जी सारी बातें अपन ई कार्यक्रम में करते हैं। अब दोस्तों यही बातन के संगे संगे आज अपन चले बरुआ सागर और बरुआ सागर में अपन मिले भैया मुन्ना लाल कुशवाहा जी से और उनसे जाने के बरुआ सागर में जो जिते जी रथ हैं बा मोहल्ला में का व्यवस्था पानी की है, का साफ सफाई की है और बा कौन सी व्यवस्था नन्या जो इनके दिल में खटक रही है। सो दोस्तों आओ जानते हैं इन भैया की बातन को। सो साथियों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।

0: बिल्कुल, जो तीन दिना को मेलारी रजे है हंस अकेला। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, ये गीत को आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहिरवार जी। अब दोस्तों एक गीत के संगे संगे अपन कार्यक्रम खुआ बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में चले थे अपन बरुआ सागर की ओर। और बरुआ सागर में अपन चले थे सिनोरा मोहल्ला में, जितने मिलत हैं अपन भैया मुन्ना लाल कुशवाहा जी से। सो दोस्तों आओ मिलते हैं भैया मुन्ना लाल कुशवाहा जी से और जानते हैं सिनोरा मोहल्ला की हालत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में। अच्छा भैया, पहला तो आप अपना नाम पता बताओ।
1: हमारा नाम भैया मुन्ना लाल कुशवाहा।
0: मुन्ना लाल कुशवाहा जी, अपन कौन से गाँव के हैं?
1: बरुआ सागर सिनोरा मोहल्ला किले के पास रहते हैं।
0: किले के पास रहते हैं,
1: सारंगी मास्टर
0: चलो
1: के नाम से हमें जाना जाता है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, एक क्रम में अपन बात करें अपने गांव के विकास की, ठीक है? तो अपने जो मोहल्ला है, तो अपने मोहल्ला में बिजली की क्या व्यवस्था है अगर बात करें तो?
1: बिजली तो आजकल जो है कि जैसे वर्षा का समय चल रहा हो तो कभी कभी जैसे फॉल्ट हो जाती है तो रात भर नहीं आती है।
0: अच्छा।
1: वैसे सरकार भी बढ़िया चल रही है, लाइट भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है हमारी लाइट के लिए।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: विकास तो बढ़िया हो रहा है
0: हमारा।
1: शौक सफाई सब ये तो हर चीज से चल रहा है।
0: अच्छी बात है। एक क्रम में अपन बात करें पानी की व्यवस्था की, तो आपके तो मोहल्ला में क्या व्यवस्था है पानी की?
1: पानी के लिए हम लोगों की व्यवस्था भैया हेडपम्प लगाए हैं।
0: अच्छा, हेडपम्प लगे?
1: हेडपम्प लगे हैं, नजदीक ही नजदीक हेडपम्प लगे, दो दो इकट्ठी लगे।
0: हाँ।
1: और खराब हो जाते हैं तो हमारे मेंबर लोग जो

0: है कि उसको ठीक करवाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
0: अगर कोई बात नहीं करवा पा रहे तो हम लोग भी आपस में पैसे जोड़ लेते हैं, अपने ठीक करवा लेते हैं।
1: और कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। काहे कि कछु आदमी जो देखो जात के सरकारी संपत्ति को जो देखत के बाकुन अपनी है।
0: नहीं, अपनी ही है वो, अपनी
1: खुद की है, सोचना चाहिए।
0: हाँ, अपनी है खुद की।
1: और जैसे के हेड पंप लगो पूरा मोहल्ला के लड़का हुए लगे खटपट खटपट।
0: नहीं ऐसा नहीं।
1: अगर काउरे रोको ही है तो उसे बिल्लर भी पड़ते का उनका पिताजी को।
0: नहीं, अभी हमारे बगल में हेड पंप लगवाया, बिल्कुल सुरक्षा से लगा है हेड पंप।
1: हाँ।
0: कोई ना खटपट करेगा।
1: हाँ।
0: ना उसको गंदगी करेगा कोई।
1: अच्छा,
0: शौक सफाई से बिल्कुल, तुम्हें कचरा भी नहीं मिलेगा हमारे घर के अंदर। ना वर की नली बिल्कुल एकदम साफ सुथरी मिलेगी।
1: बहुत अच्छी बात है, देखो कितनी बढ़िया साफ सफाई की बात है। और साफ सफाई होना जरूरी है कि नहीं।
0: तो अब हम अपने हमारे उस्ताद धनीराम कवि की जिनकी लेखा खते
1: हाँ।
0: और इसी साल अभी वो खत्म हो गए हैं, तो उन्होंने हमारे वर्ग सागर के ऊपर एक गीत लिखा था, तो उसको हमने गाया है और गाते भी हैं, वो गाते रहेंगे।
1: अच्छा।
0: आपकी कृपा रही तो
1: हाँ।
0: अरे मोरो मन रंगीर भोला, मोरो मन रंगी लाल, मोरो मन रंगी भोला, मोरो मन रंगी लालो, देखो भरुआ सागर आला, आगे किला सरोवर आला, ऊपर लक्ष्मण जी की साला, नीचे बेरो भरुआ नाला, जहाँ हो गए कीर्तन मैनन अठारा, मोरो मन रंगी भोला, मोरो मन रंगी भोला, मोरो मन रंगी लाल, आगे बनो कंपनी बागो, जिसमें फूलन भरी सुहागो, पौधे बिकता बना विभागो, मोटर जा रही धमना ये टोरा, मोरो मन रंगी भोरा, मोरो मन रंगी भोरा, मोरो मन रंगी लालो, देखो मंडी बनी विशालो, बिकता सब लोगों का माल, अब सुन लो आड़त के हालो, भर भर ठेला।

0: रोजगार बिक रही खोरे डबल पिछोरा मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी लाल। झांसी जिला हमारा खासो बरुआ सागरो हैरानासो केरे धनी राम जी दासो पार के नेचे बसो सिनोरा मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी लाल।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, पार के नीचे बसो सिनोरा। तो आपको जो सिनोरा है तो इमें अबे आप कछु ऐसी चीज लग रही कि जो चीज ना होवे या बहुत अच्छी है, वह कौन सी चीज है आपके मोहल्ला में?
0: भाई मोहल्ले के पास में से जुड़ा हमारा किला,
1: हाँ
0: किले के पास ही हम रहते हैं, तो घूमने वाले आते हैं पर्यटन घूमने के लिए। हम तुम भी किले में जाते हैं, प्रतिदिन भी जाना चाहे तो प्रतिदिन जाते हैं, तो किले में बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा
0: किले में लगने लगा, और लाइट की व्यवस्था किले में हमारी बाहर भी लाइटें दो दो कदम पर डिब्बे लगे हैं, तो पूरा किला रात में ऐसे दिखाई देता है जैसे कि हनुमान जी वो पहाड़ लेकर के जा रहे हों। अंदर बाहर लाइट, पानी की व्यवस्था, फूल फलवारी, बहुत अच्छा लगता है। आगे अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है, तो कथा भागवत वहाँ भी होती रहती है। हम तुम बैठते हैं 24 घंटे पड़े रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे कर्मचारी भी बढ़िया, चौकीदार लोग अच्छे लोग वो भी है।
1: तो अच्छा आपको कोनो ऐसी बात और ऐसी कोनो खराब बात तो नहीं खल रही कि जो आप के वो चाह रहे हो कि जो काम और होते हो जाए?

0: तो हमारा मोहल्ला बिल्कुल अच्छी तरीका से है। कोनो ऐसी बात आप अगर आपको खटक रही हो जो काम
1: केवल हमारे मोहल्ले में रहने जैसे की व्यवस्था एक चीज की नहीं है, सरकार की तरफ से भी नहीं है कि जैसे मोहल्ले में ब्याह सगाई शादी होती है तो हमारी तुम्हारी ब्याह बारात आ गई है तो उसको कहाँ रखेंगे हम।
0: सही बात,
1: केवल हमारे पास मोहल्ले के अंदर ये व्यवस्था नहीं है।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, देखो कितनी बड़ी बात एक रह गई जो आपके मोहल्ला में, अगर जो काम हो जाए तो बिल्कुल सभी तरीका से आपको
1: इसकी बहुत जरूरत है। और अच्छा सरकारी है। अगर ये कहीं बन जाए हमारे वहाँ जमीन पे तो बहुत सुविधा हो जाएगी।
0: बिल्कुल, काहे के जो सामाजिक कार्य है और इसमें सभी मोहल्ला वाले की बारात है,
1: सबका काम चलेगा, हम तुम भी बैठो।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: कोई भी आ जाए, चार रिश्तेदार हैं, अगर बैठाना है लेटाना है, घर का व्यवस्था नहीं है किसी के पास तो अपन खोल के ताला वहाँ बैठ सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, केवल अच्छी बात
1: है, केवल इतनी परेशानी है हमारे मोहल्ले में।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, तो जादे को बहुत बड़ी बात ने करके आई कि अगर जो काम और हो जाए तो बिल्कुल बढ़िया तरीका से। अच्छा, यही क्रम में अपन बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो बाली बच्चन की लाने स्कूल कितनी दूर पे है?
1: पास ही में है स्कूल तो।
0: अच्छा, तो स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है?
1: स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है, पास में स्कूल है, प्राइवेट भी स्कूल है, सरकारी भी स्कूल हैं।
0: तो मतलब व्यवस्था देखो,
1: व्यवस्था हमारी बढ़िया है,
0: शिक्षा की तो।
1: हाँ, शिक्षा की अच्छी है।
0: और एक क्रम में
1: खेलने कूदने के लिए लड़कों बच्चों के लिए हमारा जो हमने बताया किले पर भी जाते हैं, तालाब पर भी जाए, झरना पर भी आए, बाग बगीचे हैं, कंपनी बाग में खूब झूला लगे हैं, खूब झूलो।
0: और एक क्रम में बात करें अगर अस्पताल की, कोई रात बिराती अगर बीमार होते हैं तो कितने अपन ले जाते
1: हैं? तो प्राइवेट अस्पताल है हमारे बरगुआ सागर में बहुत ज्यादा भी है।
0: अच्छा,
1: तो अपने जब गांव के हैं या कोई बाहर का आ जाता है तो किसी की रिश्तेदारी, उनने कहा भैया चलो हमारे रिश्तेदार है, चलो तुम खुलवा दीजिए, हमें तो बेचीनत नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी व्यवस्था हो जाती है,
0: मदद
1: कर देते हैं,
0: की मदद
1: अपन लोग कर देंगे।
0: चलो बहुत अच्छा,
1: क्योंकि अपन गांव में रह रहे तो डॉक्टर लोग चिन्हते हैं, जानते हैं, अपन को जाना ही है रोज।
0: बिल्कुल सही बात,
1: तो डॉक्टरों की व्यवस्था है, अच्छे डॉक्टर भी है। और हमारे जो बद्री प्रसाद जो है महाराज, जो महाराज जी अस्पताल वाले, वो भी हमारे नजदीक आई हैं, तो कहो 11-12 बजे भी वो तो जग जाते हैं, इलाज करते हैं।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, तो व्यवस्था कुल
1: व्यवस्था हमारी
0: बढ़िया है।
1: हाँ, बढ़िया है,
0: तो सब साफ सफाई मोहल्ला में,
1: साफ सफाई है, बढ़िया है।
0: और रहन सहन,
1: रहन सहन बढ़िया है हमारा,
0: ऐसे तो
1: नहीं झगड़ा वगैरह नहीं होता है कभी, कोई किसी का नहीं,
0: गाली गलौज करे
1: नहीं, नहीं कभी नहीं होता है, नहीं नहीं,
0: तो ऐसा भी नहीं
1: है, नहीं जी कुछ नहीं है।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए,
1: ऐसा है हम लोगों का। केवल गाय बजाएंगे ज्यादा ज्यादा, गाय भी बजाएंगे, केवल
0: बहुत अच्छी बात है, केवल कमिटी की है, कोई सार्वजनिक स्थान ऐसा नहीं है
1: कि जहाँ चार लोग हम पानी बरस रिया तो कहाँ बैठ जाएंगे।
0: सही बात है, बहुत
1: केवल इतनी व्यवस्था हो जाए सरकारी तो उसके लिए हम बहुत खुशी मनाएंगे, हम मोहल्लावासी सब लोग
0: बिल्कुल
1: उनके लिए धन्यवाद करेंगे, सरकार को भी हम धन्यवाद करेंगे।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भैया, तो आपने देखो इतना कीमती समय निकाल के हमें दवाई खिलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद
1: भाई साहब, धन्यवाद है, नमस्कार।
2: देखो दोस्तों, जयते भैया मुन्नालाल कुशवाहा जी जो बरुआ सागर सिनोरा मोहल्ला के हते और इनसे अपनी बातचीत चल रही थी कि सिनोरा मोहल्ला में कौन सी व्यवस्था आपके लाख अच्छी है और कौन सी व्यवस्था नन्या जो हो वो जरूरी है। सो दोस्तों, ये बातें भैया जी ने बताई हैं कि शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है, लाइट बिजली की व्यवस्था बढ़िया है, साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन एक कमी हमें लग रही है इनके अंदाज से जो ये बता रहे हैं कि हमारी कमी वह है कि हमारे मोहल्ला में सार्वजनिक विवाह स्थल नन्या जो हो वो बहुत ही जरूरी है। सो दोस्तों, भैया जी ने अपने मन की बात बताई है अपने इस कार्यक्रम में। सो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे अपने मन की बात बतावो चाहें, इस कार्यक्रम में अपने गांव की बात बतावो चाहें, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9425141726। सो दोस्तों, जो नंबर लगा के आप सीधी बात हमसे कर सकत और आप बता सकत के माता दीन भैया जी आप हमारे गाँव में भी आओ और ऐसी हमारे गाँव की जानकारी भी दो। सो दोस्तों, हम आपके गांव में भी आए हैं और आप सब जन के गांव की जो खास बातें हैं वे बातें आपसे पूछें और वे बातें रेडियो से अपने प्रसारण करें। सो दोस्तों, आपके गांव की भी बात चल है। अब दोस्तों, एक क्रम में आप और कह रहे हुए को देखो माता दीन भैया जी ने ये बातें बताई हैं और दोस्तों अब यही बातन के संगे संगे अपनो आज कोई कार्यक्रम से जावे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों, अपने ई कार्यक्रम से जावे के लाने हम आपसे कह वो फिर भी चाहें कि अगर आप और अपने गांव की बात बतावो चाहें तो जरूर हमें बताएं, और अगर चिट्ठी पत्र द्वारा बतावो चाहें तो चिट्ठी पत्र द्वारा लिख के भी बता सकत हमें, आप चिट्ठी भी लिख के बता सकत। चिट्ठी लिखवे के लाने आप और लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा।

0: दोस्तों ई पते पे आप उन्हें चिट्ठी पत्री हम तक भेज सकत। आप साथियों यही क्रम में आज को ई कार्यक्रम बारी हमारे गांव से आपके दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो रहा है। काहे के दोस्तों घड़ी इशारो कर रही है कि माता दीन भैया आज आपको कार्यक्रम से जावे को समय इतना हो गया है। सो दोस्तों अपन को समय को पालन करने पड़त है, समय को इंतजार करने पड़त है, समय अपनो इंतजार नहीं करत, सो अपन को भी समय के अनुसार चलने पड़त। जब समय के अनुसार अपन को चल रहे हैं तो देखो समय हमसे भी कह रहा है कि माता दीन भैया आपको समय हो गया है। तो दोस्तों हमें दो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात अगले कार्यक्रम में और अगले गांव में अपन अगली नई बात को जाने और अपनी तपनी मुलाकात हो गए कार्यक्रम के माध्यम से। सो दोस्तों अब अपने माता दीन भैया को दो जावे की अनुमति और आप सब जन से आशा है कि आप और इनको जो कार्यक्रम पसंद आ हुई है। सो दोस्तों अब माता दीन भैया को दो जावे की अनुमति, नमस्कार।
1: बारी हमारे गांव की

0: नमस्कार।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में, और आपके साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष। कार्यक्रम लेकर आए हैं और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर बातचीत करते हैं, और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में, खेती का काम करके या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
2: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है, कि क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
2: बिल्कुल। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं। क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यावसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यावसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पर रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और बहुत ज्यादा, चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपनी ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर

0: इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
1: तो सारी जानकारी आप यहीं बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
0: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
3: जी,
2: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारी जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है और बुंदेलखंड रीजन
3: जी,
2: जो ये झांसी ललितपुर आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर
3: जी,
2: चना
3: जी,
2: उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है, इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
3: जी,
2: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
3: जी,
2: तिल का तेल है
3: जी,
2: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटें, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, क्योंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है, विचार मिलने की बात है
3: जी, जी।
2: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
3: बिल्कुल सर।
2: तो इसलिए उन विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
3: जी।
2: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
3: जी।
2: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है
3: जी।
2: तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
3: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
2: इसे स्वरोजगार, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
3: जी,
2: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके सर्व स्वावलंबन में आए
3: जी,
2: उस तहत में काम कर सकते हैं
3: जी।
2: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है।
3: बिल्कुल सर।
2: तो उसका हम उपयोग, गांव में तमाम चीजें होती हैं
3: जी,
2: जैसे बेसन है
3: जी,
2: दलिया है
3: जी,
2: यहाँ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं बहुत अच्छा है।
3: बिल्कुल सर।
2: तो किसान जो है के साथ घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार के लिए
3: जी,
2: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से जो द्वारा जो है 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती
3: जी,
2: उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग करें, उसका अपना जो है एक सोसाइटी बना लें, FIG या PO का डेवलपमेंट करें, फार्मर FIG या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप या FIO होता है
3: जी,
2: तो उसके आधार पर काम कर लें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाए और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी। और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके के हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई एश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं, लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर
2: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
3: जी।
2: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए, गांवों में लोगों को इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं, जिसको कि गांव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए। और जो चीजें हैं आज के युग में, जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं उसमें चीजें हैं, हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है। अगर चावल की बिनाई कर ले, पाइप बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले, जो है चना है चने की ग्रेडिंग कर ले, ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चने के रूप में यूज करे, सेकेंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, तो इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए। जो दलाल है, ब्रोकर्स हैं, जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा। और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है आज के समय में, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है। तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आंखें खोलने की जरूरत है। जहां चाह वहां राह की बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग, चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
3: बिल्कुल सर,
2: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
3: बिल्कुल सही बात कही आपने। और चूंकि अगर सर बात कर रहे हैं इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर बताएं।
2: कोई चीज बिकती कब है, जब क्वालिटी होती है। क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख ले तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
3: बिल्कुल सर।
2: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी है, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
3: बिल्कुल सर।
2: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
3: बिल्कुल सर।
2: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है।
3: बिल्कुल।
2: यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
3: बिल्कुल सर।
2: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, MP के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते है।
3: जी।
2: अगर किया जाए इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है।
3: बढ़िया सर। जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है।
3: जी।
2: अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं।
3: जी।
2: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।
3: जी।
2: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं
3: जी
2: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित, उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
3: बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है और हमारे युवा साथियों को चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस, चूंकि दूसरी चीज सर आती है प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से वो कार्य करें और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपकी क्या विचार है सर, किस क्या करना है?
2: उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोग देने के लिए खड़ी हुई है। गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज तो भारत सरकार पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही सारे योजनाएं सारे कार्यक्रम बना रही है। सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और बाहर निकलने की जरूरत है। रोजगार युवा भाइयों, आपको पूरी जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
2: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार

0: एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो।
1: जी बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने, और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो आप बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है यानी पैसा उपलब्ध कराती है, तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथी कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही हैं। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहां पे कि हमें ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
2: तो साथियों, अब हमारा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, चूंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है, तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है
3: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
2: और फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। फोन नंबर है हमारा
4: 9219207049।
3: साथियों, आप इस पे अपने सुझाव भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
3: नमस्कार।
2: और चल चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

0: गए काहे किसान।
1: आजीविका जाने सुने और

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात कर रहे थे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसा सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी, और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती है, फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपन और देखो कि जितनी भी कहानी अपन और अन्य स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कोई जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेओरे देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की इस कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगे और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो आओ चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। क्या करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहा।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से कर।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौरा है, ढाल के नीचे राज डॉक्टर, आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ।
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं
1: हाँ,
0: के नीचे हाँ, रहते थे। आपके परिवार में खूब है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, 3 बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते हो?
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम हो? तो
1: वहाँ पे तो चौका वर्तन करते सब देते हो, जगह जमीन नहीं होती, मजबूरी करते हो, और आप बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा के लिए का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपया दे देती महीना भर।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहता
1: है।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो हाँ। बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रहेगी, 60 साल में।
0: 60 साल में 2 साल कम हाँ। रहेगी आपकी। तो आपने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन हाँ। उसे और छोटो जो बचपन होते ही हाँ। जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलता ही खाते
0: रहे। हाँ, तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये खेल खेलते थे। और चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा का
1: साउंड को मुझे चपेटा कलर।
0: अच्छा अच्छा,
1: जी खेल रहे।
0: तो साउंड में आप गीत भी गाती हूँ? हाँ। खेलत में गीत हाँ। गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आते?
1: हाँ, नहीं।
0: तो पहले तो गाती हूँ आप?
1: अबे भूल गए, अब तो बुढ़ापो ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
1: नहीं, बुढ़ापो का नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाती
1: है? कोनो नहीं गाते हैं।
0: आप गाते नहीं? अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियन को जाने कहाँ कहाँ गई, को
0: तो
1: अंगूरी नाम, तो काऊ को पुष्पा नाम, तो ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं

0: शादी हो गई कहीं की कोई की कहीं हो अपने अपने घर चली नहीं सकते।
1: अब मिलती हूँ आप लोग?
0: हाँ मिल जाते
1: कभी
0: कभी इकट्ठे हो जाता खुशी तो जो से अपन लोग मायके में आप तो सब रहने मिला तो अच्छा
1: लगते। अच्छा अम्मा जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी रहती मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलती
0: कपड़ा? पहले तो देखो गरीबी होती सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिर आके नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते ये पहन लेते और हम तुमने फिर आके दे रही तो ये पहन लेंगे बस और यही पहरा हो
1: मतलब अलग से नहीं
0: है अलग से नहीं है। तो
1: अच्छा तो अब हम आपसे बात करें आपकी शादी कितनी उम्र में?
0: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन कितने उम्र में हमारी भाई आती
1: तो मतलब कछू तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
0: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी
1: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा जी से आपकी शादी हो रही थी वहाँ आपने देखो तो पहले से देखो तो
0: नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
1: अच्छा
0: देख से तो आते ही हमारे बाप माता आई आठ नौ साल के साथ हम नौ साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे सब नौ साल की शादी कर रही थी तो जिन जिन को काम करते हमारी माता आई ने कही क्या पाँच सौ रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने बोली तुम्हें दस दस रुपया मिला तो पाँच सौ रुपया ले लो पाँच सौ चुका उन लोगों ने सबने सौ सौ रुपया फोन में दाए थे।
1: अच्छा
0: हाँ तो वही बताएंगे उतने कई में करना
1: पाँच सौ रुपया में ब्याह होगा
0: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे रहे वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा बड़े बड़े सेठ लोग
1: तो
0: सही ऐसे वहाँ ब्याह होगा।
1: अच्छा जब आपकी ब्याह होगा एक ही बात कितने आपकी ससुराल देते हैं राधापुर में भाई है
0: ना राधापुर
1: ससुराल है आपकी तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपकी भाई हैंगी जैसे पहले दिन तेल मंडप
0: पहले पहले मंडप तेल भाव फिर मंडप भाव फिर टीका भाव।
1: अच्छा तीन ही दिन को ब्याह हो
0: तो तीन दिन को होता
1: तो बारात तीन दिन मिली रही थी
0: नहीं एक ही दिन तीन दिन मिली रही थी बारात
1: तेल वाला
0: दिन आ जाती नहीं आते टीका के दिन।
1: अच्छा
0: और फिर भावर मावर बरतती फिर वो दिन थोड़ी जाती बरात दूसरे दिन आ जाती
1: हमारी
0: जयमाला नहीं डरी बहन हमें तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन पे हाँ खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
1: अच्छा
0: और जब तुम जो होट पर लाल बापू में लाई।
1: अच्छा
0: जय माला नहीं लड़का मड़वा गाला ना चावल मार दे।
1: अच्छा चावल जी का ढाले जाता आपको कुछ बताओ
0: बता हमें नहीं बता।
1: अच्छा चावल को कुछ बताइए
0: मड़वा के नीचे और खड़ा कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगे पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ाओ चढ़ो फिर
1: गाँव रहे कहाँ चढ़ो तो आपको
0: हमें पेजना चढ़ी थी एक किलो के वो खमवज्जा
1: एक किलो की
0: पेजना एक किलो के पेजना हाँ। खमवज्जा
1: और
0: जो एक पैर थे पहने थे
1: हाँ
0: दे चढ़े थे।
1: अच्छा
0: तो अब रखे हो आप हाँ की बात
1: छह
0: लड़का होगा छह लड़का के ब्याह कर ले।
1: अच्छा
0: से
1: सही बात है। अच्छा आपकी विदा का है
0: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा वही में वही थी
1: पिता
0: नहीं उतने से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
1: बैलगाड़ी में आए थे। अच्छा एक ही पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी थी
0: हम ऐसे कब हम बैठ जाते लेकिन वैसे बैठ जाते लेकिन विदा होके हमारी गाड़ी गई से आई थी।
1: अच्छा बैलगाड़ी
0: से बैलगाड़ी से होती पहले विदा सवाई की होती हम अच्छी का पहले जेते वाहन कहाँ थे और चातक नंगा जाते खेलार तक नंगा जाते अब तो एक कदम नहीं निंग रहा आदमी
1: अब तो अगर तुम्हें भी जाना
0: अगर तुम्हें कारस देव में जाना तो गाड़ी से
1: जाना
0: जाना
1: सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आए तो इतने ससुराल में कुकु मिलो आपको
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
1: अच्छा आपके में नंबर की है
0: हम दूसरे नंबर के नानी दो दो
1: नंदन की शादी हुई
0: हाँ
1: शादी के बाद
0: बड़ी हती
1: बड़ी हती। अच्छा तो फिर आपके एक एक का रस्म है भाई मतलब

0: कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहते फिर चले गए थे।
1: अच्छा, खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई?
0: खिचड़ी बनाई थी वो।
1: आपने खुद बनाई थी?
0: नहीं बना पाई थी हमने, हमारी जेठानी ने बना दी थी।
1: अच्छा।
0: और चमचा से तरवा दी थी।
1: नाम होगा तो
0: द्वारे में ओरेंडर हुआ दे।
1: अच्छा, ओरेंडर हुआ दी थी। जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई और सबने खाई तो फिर का करने मिलो? तो
0: हमें नहीं कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
1: हुआ देने।
0: हाँ,
1: ये उल्टा नहीं हो रहा
0: के? पहले देता ही हते अभी भी देता मोरन के। जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा बहु से सास लेते हुए पैसा, चाहे दस धरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ रख दे, लेकिन वो सास ले ओरेंडा तो ओरेन पे रखत बहु।
1: अच्छा।
0: तो बेबी सास ले।
1: अच्छा,
0: जी की सास ना हो तो जेठानी
1: ले। तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलती सास, तो आपके समय में खुलत?
0: नहीं, हमारे समय में नहीं खुलत,
1: जूड़ा नहीं खुलते।
0: नहीं।
1: अच्छा, आपकी
0: जो छोड़ा खुलते, जो
1: छोड़ा खुलते,
0: जो छोड़ा
1: तो ईगे भी पैसा
0: सास खोल सकती है,
1: खोल सकती
0: है, खोल सकती
1: सास। तो का महत्व होता तो मतलब
0: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास, कछु महत्व हो जाए।
1: अच्छा, आपको नहीं पता?
0: छोटे आते जो कछु दे
1: फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपनी ससुराल में, फिर कैसे काम कराती? जेठानी के संग मिलकर कराती या लड़ाई होती?
0: जेठानी के संग कराते, लड़ाई का एक होती।
1: कभी लड़ाई नहीं हुई आप?
0: नहीं, हमारी नहीं हुई जेठानी से ना, सास से भाई कब होना
1: का नहीं होती। आप सीधी हती के दो जने
0: दो एक से आते मिल के कर लेते हो बस, सबने फिर से आने होगा ऐसे सब अलग अलग होगा।
1: अच्छा, और सासरी में का काम होती आपके? खेती?
0: खेती होती, रात से खेती होती।
1: अच्छा,
0: पहले मोटर कहाँ होती, रात ऐसे खेती होती से रात चलाते रहते।
1: अच्छा, और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती?
0: चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से।
1: कितने बजे उठती हैं आप?
0: चार बजे उठ जाते, चार बजे से पी सकते, से पाँच छह किलो नाच पीस लेते।
1: पाँच छह किलो रोज पीस?
0: हाँ, रोज उतना जेठानी पी सकती।
1: तो भी कभी पी सकती आप? जैसे सुबह से उठ के पी सकती?
0: चार बजे से भी पी सकती।
1: संगे पी सकती
0: ना? कबू संगे कबू अलग अलग पी।
1: अच्छा, फिर उसके बाद चक्की पीस भी बाद का काम?
0: फिर गोबर मोबर डाल रखते।
1: कितने गाय भैंसे
0: होती आपकी? दस बारह गैया होती, गोबर मोबर डाल रखते, झाड़ा झूरी करते, फिर एक जनी रोटी बनाने लगती, एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा, ऊपर वो काम कर लेती।
0: तो फिर कुबा पे आठ बजे तक निकल जाते, सो रात चलाते दिन भर।
1: अच्छा, वहाँ से बहाने आते?
0: नहीं, बेलन से।
1: बेलन से? हाँ, बेलन से चलते
0: घर में। नहीं आती लोहे
1: की? हाँ हाँ।
0: सो वही चलाते रहते, कब हम सास जेठानी चलाती, कब हम चलाते रहते।
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपकी? अच्छा, आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है?
0: हमारा छह लड़का।
1: छह लड़का? और लड़की?
0: लड़की नहीं है एक।
1: लड़की नहीं है एक? तो अपने लड़कन को तो पढ़ाओ जो
0: हुए? हाँ, पढ़ाओ, परेशानी हाथी से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा,
0: पाँच पाँच पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा, सरकारी? हाँ। स्कूल में। तो अब सबकी शादी हो गई?
0: हाँ, सबकी हो गई, सब सब नाती ने तुलन की हो गई।
1: अच्छा, नाती की भी हो गई? कितनी नाती है ये?
0: छह नाती है, छह नातने हैं।
1: आपकी को मतलब
0: बिलाद
1: बड़ा परिवार है?
0: हाँ, तो छह लड़का है, तो दो दो है सबके।
1: अच्छा,
0: और एक के चार है बड़े के, तीन मोड़ी है,
1: तो
0: मोड़ी तो आप बिरोबर हो गए, तीन ना ना मोड़ी के, दो मोड़ी मोड़ा होगा, एक के छोटी, एक के मोड़ा होगा, एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है, मोड़ा है वो।
1: बहुत बड़ा परिवार है आपको? अच्छा लगा था ये सब जने आ जाते हैं तो और अच्छा लगा था ये ना। तो आप सुवाटा नहीं खेलती हो?
0: नहीं।
1: कैसा खेलती आप अपने?
0: सुवाटा तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस पे खेल,
1: गाना गाते
0: सब भूल गई,
1: भूलने नहीं आते, याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी है। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
0: 20 साल से ज्यादा हो गई।
1: जैसे आपने पढ़ाई पांच तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसे लग गई थी मतलब?
0: पहले उन्होंने चार जन्म के कागज दिए थे भर के, तो सबने 200 रुपये में लगते, तो सब जना ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने।
1: हाँ।
0: हमें नहीं करने। सो फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह, कभी ज्यादा भी हो सकत।
1: हाँ,
0: साढ़े 300 में लगते, हमें 200 रुपया।
1: धीरे धीरे करके
0: फिर हम इनके ससुर

0: बोले लादा हम दे दे वो करें तो मैं दो चार पहली नाच खावे के ला लें बजा का करा इनके ससुर दे देते दो चार पहली नाच पानी भरे आते इनको तो फिर लगे रहे इनके तो पानी तो अबे भी अबे छोड़ दा हमने बना तो नहीं अबे जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब इसे पानी भरे इनको बोला खावे पीवे की परेशानी से जैसे नहीं आ तो जिदे तो सकते खावे नहीं करते तो को दे रहा
1: सही बात
0: है दे रहा तो
1: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला भी लाके मिल जाता आपको
0: हाँ आप 5,000 हो गए ये दो तीन महीना नहीं 2,500
1: चलो बढ़िया
0: फिर 350 है हमारे फिर 1,500
1: अभी तो फिर धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा बहुत बढ़िया आपके पूरे जीवन को अनुभव का रहो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने क्या सीखो
0: हम जो खेती किसानी सीखी हो जा आंगनबाड़ी कर ली फिर से जाकर
1: नहीं आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें
0: चौपे में तो महत्व देखो आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ा लिख लेते तो और अच्छे हो जाते लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए
0: अब जैसा पेट को तो रोटी नहीं है पढ़ बे की क्या सोच रहे बताओ
1: सही बात है लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल फ्री किताबें मिल रही है
0: लेकिन नाम मिल रहा है पहले कहाँ मिला
1: था पहले नहीं मिला तो लेकिन अब मिल रही तो अभी के लाना पढ़ाई चाहिए है ना बिल्कुल तो अम्मा और का वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
0: और का कहना
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं
0: अपनी को तो सब हमारी मोनी सब 8-8 पढ़ी नातने नाती पढ़े
1: तो पढ़ाए चाहिए
0: हाँ सब पढ़ रहे को पढ़ रहा हो को वह बड़ी बड़ी हो गई सब सात सात आठ आठ में करके छोड़ दो ब्याह पढ़ दो नातन की
1: बहुत बढ़िया
0: को पढ़ दो अब दो नाती पढ़ रहे की
1: चलो बढ़िया अम्मा आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ ये गिलाने बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

सुनो रेडियो अपनी बातें, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है गो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, जी सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी। काहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढत थी, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहेंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है गो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगत हैंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो के सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई

जरूर करवावें, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी, ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैंगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सका था कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे।

या फिर आपके भी गांव में या आपके आसपास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप और सुनबो चाहते हैंगे, तो ये लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई हैगी, काहे कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैंगे या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैंगे अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपनो समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत, अपनी फिर ये मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार। और चला चला सुनो आप गीत खो जिखो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैलसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो है कटुवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनक रोग है उन पर चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं

0: उनमें मधु रोमिला सिता, शून्य लासिता तथा उपता या जिसे मिलानी रोग कहते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मधु रोमिल आसिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मधु रोमिल आसिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
1: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
0: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है के कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं या फिर उन फसलों के बीजों में जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं। तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है तो हाँ, कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए?
0: जी वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उक्ता या ग्लानी रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मधु रोमिल आसिता जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती है। अगर संक्रमण उग्र रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा रूपित हो जाते हैं यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या वांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू बगैर फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए। और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है, तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.25 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो
0: जी
1: शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाएं, तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है, और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं, इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम उनकी लागत भी कम होती है, और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान
0: जी
1: रखना
0: जी जी
1: चाहिए।
0: जी
1: और
0: जी
1: अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर
0: जी
1: बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है,
0: जी
1: तो ऐसे में क्या किया जाए,
0: जी
1: कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो। साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी मैम,
0: इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं क्षेत्र
1: बिल्कुल मैम, जी मैम।
0: में।
1: और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो
1: जी
0: वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है तो उसमें एक रोग लगता है वो है अगेती झुलसा रोग, और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इन
0: जी
1: बातों
0: शुरुआत
1: को।
0: से किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है मतलब विकल्प ये है कि
1: जी
0: किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए,
1: अच्छा
0: वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है जो रोगजनक होता है
1: जी
0: जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो
1: जी
0: डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज
1: बिल्कुल
0: कर
1: मैम,
0: देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट
0: जी
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी
0: जिससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना यानी कि खाली पड़े रहते हैं तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
0: आप ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
1: जी
0: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है। दूसरी
1: जी
0: चीज ये है वहां रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही,

0: खरबूज खरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था। वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम बाल विवाह की इसमें बात करें, तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह, इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है मैम?
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं।
1: जी
0: क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है।
1: जी मैम,
0: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है,
1: जी मैम,
0: क्योंकि तो हम लोग जो है, हमारा खान पान ऐसा है कि
1: जी मैम,
0: हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
1: जी
0: दूसरे,
1: मैम,
0: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ शिक्षा की कमी है।
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम,
0: जहां शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
1: बिल्कुल मैम,
0: और
1: बिल्कुल
0: जहां शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
1: जी मैम,
0: और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
1: जी मैम,
0: लोग जो है वो, अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए तो
1: जी मैम,
0: पर्यावरण भी सुधर जाएगा,
1: जी मैम,
0: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक जाएंगे।
1: कहीं ना कहीं मैम
0: इसका जो है,
1: हमने भी
0: इसका
1: मैम,
0: एक और
1: जी
0: जी
1: मैम,
0: विकल्प यही है कि शिक्षा,
1: जी बिल्कुल,
0: आप
1: आपने सही
0: शिक्षित
1: बात कही
0: हो
1: है
0: और
1: कि
0: दूसरों को
1: शिक्षा एक
0: शिक्षित
1: ऐसा विकल्प
0: करें।
1: है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए।
0: क्योंकि
1: समस्या यहाँ पर
0: जब आप
1: मैम ये
0: शिक्षित
1: आती,
0: होंगे,
1: जी
0: जी, अब आप शिक्षित होंगे तभी
1: जी
0: आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
1: बिल्कुल
0: पाएंगे
1: मैम,
0: कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
1: बिल्कुल,
0: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें,
1: जी मैम,
0: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्ती से लगाएं, और जंगलों को ना काटें,
1: जी मैम,
0: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो
1: जी मैम,
0: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको भलीभांति जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब ज्यादा किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005-07 की बात है
1: जी मैम,
0: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 7 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम,
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था। तो
1: जी मैम,
0: अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है।
1: जी
0: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी, जो लड़की या शादी करना है
1: जी
0: वो
1: मैम,
0: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा।

0: वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो
1: जी मैम, बिल्कुल
0: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
1: जी मैम,
0: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
1: जी मैम,
0: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था, बिल्कुल
1: बिल्कुल मैम, जी मैम,
0: साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा कोई लेना नहीं चाह रहा
1: जी मैम,
0: था, लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका
1: बिल्कुल
0: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम। इसका मैम बस
0: तो
1: लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको।
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें,
1: जी मैम,
0: जल संरक्षण करें
1: जी मैम,
0: और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके,
1: जी मैम,
0: उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।
0: जी धन्यवाद,
1: जी थैंक यू मैम,
0: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: चलिए थैंक यू मैम। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी को। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को, और गीत के बाद फिर सुने अपन स्टोरी को। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

हाँ देखो दोस्तों, जो कितनों बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ये वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित

तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंची। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए। परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किंग कर्तव्य मूड रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढें जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है। ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों, इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से। और दोस्तों, इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी माता दीन कुशवाहा जी ने।

0: देखो दोस्तों, जापान सब्जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब्जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे? अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आपो ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपो ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन हो गए को समय हो गया है। नमस्कार।
2: ये आवाज है बुंदेलखंड की।